0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: புரட்சியில் உங்களின் எதிர்காலம் பிரகாசிக்கட்டும். பெரம்பலூர் தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அட்டோனமஸ், நவீன உலகின் தேவைகளான சைபர் செக்யூரிட்டி, ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மற்றும் செமிகண்டக்டர் போன்ற உயர்தர தொழில்நுட்பத்தில் நவீன ஆராய்ச்சி ஆய்வகங்கள் மூலம் உயர்ந்த வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சிறந்த தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களை உருவாக்கும் பெரம்பலூர் தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அட்டோனமஸ். கவுன்சிலிங் கோட் 3805।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: चुड़ चुड़ वेल, सुपर कूल स्टाइल, सारदा साड़े ओड़ा, समर फुला कूल।
5: जिल जिल समर कूल कूल शॉपिंग, तिरची सारदास।

बहुत प्यार करते हैं ना आप अपने वतन से, अपने देश से। हम यहां सरहद से कोसों दूर बैठे हैं और बात कर रहे हैं अपने अपने देश प्रेम की। तो सोचिए, सरहदों पर बैठने वाला हर वो सिपाही, हर वो अफसर जो मां भारती की उस सरहद की रक्षा कर रहा है, आसमान में जमीन पर वो चांद सितारे हमारे, वो धरती मां का मिट्टी का वो लेप, और उसी लेप के बीच में वो भावनाएं तमाम हिंदुस्तानियों के लिए। संदेश टू सोल्जर्स एक ऐसा शो है जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हिंदुस्तान की फौज के उन सितारों से, सुसज्जित अफसरों से, उन फौजी भाइयों से जो अपना परिवार पीछे छोड़ के आपके परिवार को सुरक्षित रखने का बीड़ा उठाते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे ही एक जाबाज अफसर मौजूद हैं, मेजर एस के यादव, जिन्होंने 15 साल की उम्र में एनडीए ज्वाइन की और उसके बाद 14 से ज्यादा साल उन तमाम जगहों पर भारत मां की रक्षा की, सेवाएं दी अपनी। हमने कई जाबाज अफसरों और सिपाहियों के साथ आपकी मुलाकात कराई है, लेकिन

इन आज हम टैंक रेजिमेंट की बात करेंगे, टैंक के अंदर की वो जिंदगी, टैंक का वो लोहा जो टक्कर लेता है दुश्मनों से, टैंक रेजिमेंट की तैयारी, उसका फौलाद आज हम सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स में।

0: आइए मुलाकात करते हैं यहां मेजर एस के यादव के साथ। स्वागत कर रहा हूं सर, और पूरे हिंदुस्तान का ये नमस्कार, ये सलूट स्वीकार कीजिए।
1: शुक्रिया, थैंक यू।
0: कैसे हैं सर आप?
1: एब्सोल्युटली फाइन, फर्स्ट क्लास।
0: आज हमने आपको सिविलियन ड्रेस में बुलाया है, लेकिन जज्बा वही है जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जो ताकत है, भारत माँ की वो ड्रेस आपकी।
1: बिल्कुल, वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर, एज दे से, यू नेवर लीव द आर्मी। एक बार आप आर्मी ज्वाइन कर लें तो एक फैमिली बन जाती है
0: जी,
1: और आप चाहे रिटायर हो जाएं, सर्व कर रहे हो, वो पूरी फैमिली एक जैसी होती है। टिल यू रीच योर लास्ट स्टेज, द होल फैमिली, योर रेजिमेंट इज विद यू इन गुड एंड बैड टाइम्स। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटिफुल इंडियन आर्मी।
0: आप तो टीनेज में ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ जुड़ गए। इंडियन
1: आर्मी, मैं वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफिसर्स था। फर्स्ट अटेम्प्ट एनडीए में चले जाएं आप हमारे टाइम पे, तो आप 15.5 साल की उम्र में आप एनडीए जाते हैं, आपकी दाढ़ी भी नहीं हुई होती, फर्स्ट टाइम शेव होता है वहां पे जाके।
0: तो रैगिंग हुई थी सर आपकी?
1: बहुत।
0: उसके बारे में याद है, 15 साल की उम्र में सर फौज में चले गए आप, और रैगिंग तो हुई होगी।
1: 15 रैगिंग की वजह से मैं कहूंगा आई शुड बी थैंकफुल ऑन द हाइंड साइट, क्योंकि वो रैगिंग नहीं, हमको वो स्ट्रेंथ, हमको वो ताकत, हमको वो निश्चय दिया है जो हमारे सीनियर्स ने हमें सिखाया। वो एक फाउंडेशन बन जाती है और वो फिर फॉर लाइफ टाइम आपके साथ रहती है। और वो बॉन्डिंग जो होती है नेशनल डिफेंस अकेडमी में, वो रगड़ा के साथ ही होती है। बेसिकली रगड़ा होता है, एंड देयर इज लॉट ऑफ एकेडमिक्स। ऑफ कोर्स वी हैव ए डिग्री फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन बीएससी एंड बीए। अदर देन दैट द सब्जेक्ट्स आर ऑल मिलिट्री साइंस, मिलिट्री ज्योग्राफी एंड देयर आर फील्ड एक्सरसाइजेस। लेकिन हम जो एनडीए से जो होते हैं, वी आर बॉन्डेड सो वेल। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम भी बॉन्डेड है। और अभी भी हम लोग रिटायर हो चुके हैं, पीपल माई कोस्टमेट्स हैव बीन जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, बट वी स्टिल रिमेन एंड टॉक लाइक एज इफ वी वर इन एनडीए।
0: आपने व्हाट्सएप का नाम लिया, तो आज एक बार फिर से अपने श्रोताओं को बता दूं कि हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है, आप उसके साथ, उसके जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9868107070 9868107070। कोड वर्ड्स कुछ ऐसे होने चाहिए सर कि जल्दी समझ में आ जाए। आपको 15 साल की उम्र में किसने प्रेरित किया कि आप फौज में जाइए, एनडीए में जाइए?
1: देखिए, मेरे फादर एयरफोर्स में थे
0: जी,
1: और हम लोग एक फौजी फैमिली कह लीजिए आपको। मेरी सिस्टर आर्मी में डॉक्टर थी, वो उन्होंने शादी भी एक आर्मी ऑफिसर से की जो कि एज ए आर्मी कमांडर जनरल रिटायर हुए हैं। और हमारे टाइम पे फौज के अलावा कुछ सोचा ही नहीं था हमारी फैमिली में।
0: फौज में ही जाना है,
1: शुरू से ही एनडीए की तैयारी करनी है और यूनिफॉर्म पहननी है, क्योंकि फादर को देखा था यूनिफॉर्म में, और कोई कुछ उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं।
0: मदर तैयार थी कि फौज में जाइए, इतने सारे फौजी घर में, बोला नहीं उन्होंने, ये बच्चा भी जाएगा वहां।
1: उनके हस्बैंड भी थे फौज में, उन्होंने फौज के बाहर फ्रेंकली कोई लाइफ ही नहीं देखी हमने। हमारा जो फौजी कंटोनमेंट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो ए क्लोज निट फैमिली, सारा सेल्फ सफिशियंट होते हैं वहां पे, फ्रॉम ऑफिसर्स मेस टू टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, योर मूवी थिएटर, एवरीथिंग इज सेल्फ सफिशियंट। यू डोंट रियली हैव टू गो आउट इन स्मॉल लिटिल स्टेशंस टू द सिविलियन एरिया।
0: सो इज दैट एडवांटेज, और You think you miss something अगर सिविलियन एरिया में नहीं जा रहे, कुछ ऐसा?
1: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द कंटोनमेंट्स और आर्मी स्टेशन आर इन द फील्ड एरियाज, सो फील्ड एरिया में तो यू हैव टू बी सेल्फ सफिशियंट, बिकॉज आपको कुछ मिलता नहीं है इतना जो आपको चाहिए।

0: चाहिए, चाहे राशन हो, चाहे जो
1: जी
0: एंटरटेनमेंट
1: जी
0: चाहिए वो
1: जी
0: तुम्हारे आसपास ही होनी चाहिए।
1: जी
0: मेट्रो सिटीज में दूसरी बात है,
1: ओके
0: यू हैव ऑफ कोर्स अप्रोच टू मॉल्स एंड सिनेमा हॉल्स एंड सो ऑन। कभी कभी आते हैं फील्ड में, अगर आप पोस्टिंग कर लें तो अगली पोस्टिंग मोस्ट प्रोबेबली एक टाउन में दे देते हैं उसको थोड़ा रेस्ट देने के लिए।
1: ओके पर मुझे ये बताइए कि आपने अपने फादर के साथ, आपके फादर की तो पोस्टिंग होती रहती होगी, जब वो एयरफोर्स में थे तब आप ज्यादा स्टेशंस में गए, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग सिटी, लाइफस्टाइल अलग, भाषा अलग, खान पीन अलग, पढ़ाई भी अलग हो गई होगी।
0: यस बिल्कुल सही बात है। ये एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी, बट आई टेक इट एज एन एडवांटेज बिकॉज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज
1: जी
0: दैट यू एक्चुअली कम टू सी सो मेनी प्लेसेज, ए न्यू प्लेस एवरी टू
1: यस
0: ईयर्स थ्री ईयर्स,
1: जी
0: एंड आई रियली लव दैट। एंड एक्चुअली वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग आई स्टिल लव टू ट्रैवल बिकॉज ऑफ दैट, परहैप्स इन यू नो थिंग विच हैव गॉन थ्रू। एंड आफ्टर ए वाइल मेरे फादर ने सोचा भाई बहुत घूमना हो गया है बच्चों को, तो मुझे हॉस्टल में डाल दिया, एफओ स्कूल में, सुब्रोटो पार्क दिल्ली में,
1: ओह
0: बोर्डिंग स्कूल,
1: टैप्स कहते थे उसे,
0: टैप्स। हाँ
1: टैप्स,
0: अब टैप्स हो गया, पहले
1: आपका और
0: पहले
1: मेरा एक कनेक्शन है
0: एएफसीएस
1: एफओ
0: होता था।
1: से। ओके
0: सो उसमें बोर्डिंग स्कूल में डाला तो डिसिप्लिन और बढ़ जाता है, एनडीए की तैयारी हो गई, सो दैट इज हाउ द एकेडमिक्स वाज। लकीली आई वेंट थ्रू द एनडीए एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट
1: जी
0: एंड एनडीए चले गए।
1: और हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आप टैंक रेजिमेंट के साथ जुड़े, T-72 टैंक के बारे में हम बात करते हैं, अहमदनगर में। आपका आपकी पहली पोस्टिंग गुजरात में थी?
0: नहीं, पहली पोस्टिंग हमारी रेजिमेंट में होती है
1: जी।
0: सबसे पहले, उसके बाद वहाँ 6 महीने बिता के हम लोग एक यंग ऑफिसर्स कोर्स करते हैं
1: ओके
0: जो हमारा टैंक्स का कोर्स अहमदनगर में होता है।
1: ओके
0: तो वहाँ पे हमको एक्चुअली रियली टैंक के बारे में पूरा पता चलता है, उसकी ट्रेनिंग, फायरिंग, उसका
1: वाह
0: डीएनएम जो होता है, ड्राइविंग, मेंटेनेंस, गनरी, उसकी रेडियो कैसे चलती है।
1: ओके
0: और उस जमाने में जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमारे पास विजंत होते थे,
1: या विजंत
0: T-55,
1: या
0: और उसके बाद देन T-55 से हम T-72 में ग्रेजुएट हुए
1: जी
0: जिस पर मैं इंस्ट्रक्टर भी था। मैंने
1: ओ वाह
0: अहमदनगर में आई वॉज इंस्ट्रक्टर ऑन T-72 टैंक, एंड अब तो T-90s एंड अर्जुन आ गए हैं, उसके भी अपग्रेडेड वर्जन।
1: अपग्रेडेड वर्जन है सर। टैंक के बारे में मैं जानना चाहूंगा क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं दे वुड आल्सो वांट टू लिसन कि टैंक का पहला जब आप देखते हैं, एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो फौलाद लगता है पूरा, है ना? सो यू वेंट देयर बाय चॉइस और?
0: आई माई फर्स्ट चॉइस इन द इंडियन मिलिट्री अकेडमी वॉज द टैंक रेजिमेंट
1: ओके
0: को, एंड आई ज्वाइन द रेजिमेंट कॉल द डेकन हॉर्स
1: डेकन हॉर्स
0: जो कि 1790 में रेज हुई थी एज द
1: वाह
0: प्राइवेट आर्मी ऑफ द निजाम ऑफ हैदराबाद, एंड
1: ऑलराइट
0: देन इट वेंट थ्रू वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट बिकेम रॉयल डेकन हॉर्स एंड देन द डेकन हॉर्स आफ्टर 1947। एंड वी हैड ए मुस्लिम स्क्वाडन इन बिफोर 1947।
1: अच्छा
0: आफ्टर पार्टीशन दैट स्क्वाडन वेंट इन टू पाकिस्तान इन ए रेजिमेंट कॉल प्रोबिंस हॉर्स।
1: ओके
0: फॉर क्वाइट सम टाइम एक्चुअली स्ट्रेंजली वी यूज्ड टू हैव अ कॉमन न्यूज लेटर ऑल्सो आई थिंक वेयर प्रोबिंस हॉर्स सॉर्ट ऑफ बिकेम अ सिस्टर रेजिमेंट
1: ओके
0: दो इन ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर।
1: ओके
0: And we had one officer also till quite late going to London, UK to attend the British officers who used to host
1: जी.
0: their fathers or they themselves served in the Royal Deccan Horse or the Province Horse. So
1: sir,
0: it was quite a
1: Deccan Horse के साथ जुड़ने के बाद वो जज्बा कैसा आया, कुछ वो अंदर की आपके अंदर की भावना you want to share with us?
0: Yes, I was always a cavalry man. हम ब्लैक बेरेज पहनते हैं, काली टोपी
1: जी,
0: एंड हम लोग वन ऑफ द टू फाइटिंग आर्म्स हैं, एक इन्फेंट्री होती है, एक टैंक्स होते हैं। जो इन्फेंट्री होती है वो बेसिकली जब लड़ाई होती है तो अगर पहाड़ों में है तो इन्फेंट्री आगे होती है, टैंक्स नहीं जा सकते। लेकिन पंजाब या राजस्थान जो प्लेन्स में होता है
1: जी,
0: तो सबसे पहले जब लड़ाई शुरू होती है टैंक्स आगे जाते हैं,
1: okay.
0: वो लीड करते हैं, दे ऑक्यूपाई ए पीस ऑफ लैंड एंड देन द इन्फेंट्री गोज एंड ऑक्यूपाइज इट
1: जी,
0: ये अब हमारा हुआ
1: एंड
0: यू गो फॉर योर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। सो दैट इज ऑट द टैंक्स टू, इट्स अ टफ लाइफ, गर्मी होती है, अंदर बैठने की बहुत कम जगह होती है.
1: हाँ, वो थोड़ा हम जानना चाह रहे थे कितनी जगह होगी सर लगभग.
0: आपने पता नहीं, वो अभी

0: मूवी आई थी 21 करके,
1: जी
0: जो पूना उसकी
1: जी
0: अरुण खेतर
1: जी
0: पार्क पर,
1: जी जी
0: तो उसमें टैंक कमांडर की एक ही सीट होती है, ये ऊपर कपोला होता है, उसमें बैठ के ही जाना है, वहीं सोना है, अपने सब कुछ वहीं करना है।
1: ओके
0: एक स्ट्रेंज बात मैं आपको सीक्रेट
1: जी
0: बताता हूँ
1: जी
0: कि विजंत टैंक में बहुत जगह होती थी, तो
1: अच्छा
0: हम लोग जो जवान, जब ड्राइवर एक्सरसाइज कर रहा होता तो आपने रेस्ट करना है, आप नीचे स्लीपिंग बैग लगा के सो भी सकते थे।
1: अच्छा
0: लेकिन जो रशियन टैंक है वो बड़ा कॉम्पैक्ट होता है,
1: विच इज T-92
0: T-72,
1: 72
0: T-55, T-54 होते थे उसके पहले,
1: ओके
0: अब T-90s। कॉम्पैक्ट टैंक, उसमें एक गनर होता है, एक कमांडर होता है, एक ड्राइवर होता
1: उसके
0: है।
1: पीछे भी कोई वजह है कि आप अंदर उतना स्पेस नहीं दे रहे हो?
0: नहीं, उसमें बिकॉज स्पेस इसलिए नहीं है बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अदर गैजेट्स इन दैट, बहुत सारे गैजेट्स हैं, यू नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, यू नो गनरी के गैजेट्स हैं, रेडियो के गैजेट्स हैं,
1: गॉट इट
0: ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस के गैजेट्स हैं, सो यू डोंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी टाइम। देर लॉट ऑफ एम्युनिशन स्पेस दैट इज केप्ट टू लोड एंड रीलोड द बैरल,
1: राइट तो आज के टैंक्स भी डिजिटाइज हो गए हैं
0: सॉर्ट ऑफ
1: सॉर्ट ऑफ
0: डिजिटाइज, तो कंप्यूटर तो नहीं है अंदर एज फार एज आई नो नाउ,
1: देखिए
0: बट
1: सिविलियन हूँ, सिविलियन वाले सवाल पूछूंगा।
0: हाँ जी
1: क्या पता आपके पास एक जीपीएस है, आपको अपनी लोकेशन, अपना रूट आप देख रहे हो, यू नेवर नो।
0: यस यस
1: अंदर आपके पास जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो शायद बदल गई हो,
0: हाँ,
1: इट्स मोर टूवर्ड्स कुछ
0: उनके
1: ऐसा
0: पास
1: जानना
0: एक
1: चाह रहे थे।
0: रशियंस के पास पहले एक नेविगेशन सिस्टम होता था क्वाद्रात,
1: ओके
0: वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम था, खाली कमांडिंग ऑफिसर्स के टैंक में लगा होता था।
1: जी
0: लेकिन अब तो यू नो जीपीएस है तुम्हारे पास, इनफैक्ट आई थिंक एक्चुअल वॉर, टैंक्स की वॉर रियली स्पीकिंग हुई नहीं है,
1: ओके
0: लेकिन नेविगेशन इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम नाउ एज यू नो, यू हैव इवन गूगल
1: एग्जैक्टली
0: मैप्स,
1: हाँ
0: यू हैव
1: वही वही मैं
0: एवरीथिंग,
1: जानना चाह रहा था आपसे कि
0: सो
1: पर आप सोचिए एक अगर मैं सिविलियंस के लिए थोड़ा समझना चाहूँ, सोचिए हमारे टैंक्स हैं, एक एक समय में अगर 10 टैंक्स अटैक के लिए जा रहे हैं, आपने सारा जो प्लान है, आपका जो मिशन है, वो सब कैलकुलेटेड है,
0: करेक्ट,
1: पर किसी वजह से आपको थोड़ा सा डाइवर्ट होना पड़ा, 4 टैंक्स इधर गए या उधर गए, या आप ऐसे माहौल में फंस गए जहां आपके यू नो व्हाट यू प्लान कुड नॉट हैपन, नाउ यू हैव टू फेस, सो हु गाइड्स द रूट, वहां आप कैसे वो गाइडेंस लेते हैं?
0: सी देखिए ऐसा होता है, पहले तो ये सारी डिस्कशन सैंड मॉडल पे हो जाती है कि
1: ओके
0: क्या करना है, कैसे
1: जी
0: करना है, कहाँ
1: जी
0: जाना, देर इज हमें मैप्स, हमारे जमाने के टाइम में बता रहा
1: जी
0: हूँ, मैप्स इशू
1: एब्सोल्युटली
0: होते थे, ग्रिड मैप्स,
1: जी
0: और उस
1: जी
0: पर
1: जी
0: हम लोकेशन कर देते अपने ऑब्जेक्टिव्स
1: जी जी
0: और कैलकुलेट कर लेते थे कितना टाइम है, किस स्पीड पे कितने टाइम लगेगा वहां पहुंचने के लिए।
1: जी
0: फिर हमारे ईच रेजिमेंट में एक थ्री तीन स्क्वाड्रन्स होते हैं और हर स्क्वाड्रन में ट्रुप्स होते हैं, तीन ट्रुप्स,
1: ओके
0: हर ट्रुप में तीन टैंक होते हैं, तो यू नो सो बेसिकली यू हैव ए स्क्वाड्रन कमांडर, ए ट्रुप लीडर जो सबसे जूनियर होता
1: जी
0: है,
1: जी
0: देन यू हैव ए स्क्वाड्रन कमांडर एंड देन यू हैव द रेजिमेंटल सीओ,
1: जी
0: दे ऑल आर ऑन अ रेडियो नेट टुगेदर,
1: ओके
0: सो जो आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं वो आपको इंट्रा नेट पे सारी इंस्ट्रक्शन सेम मिल रही हैं, अल्फा स्क्वाड्रन आप लेफ्ट जाइए, चार्ली स्क्वाड्रन आप राइट जाइए, ब्रावो स्क्वाड्रन होल्ड करिए, यहाँ पे होल्ड फायर, ये सारी होती है। जो सीओ होता है
1: अल्फा
0: वो
1: टू
0: एक
1: चार्ली
0: दूसरे नेट पे होता है जो उसके बॉस के साथ होता है,
1: ओके
0: ब्रिगेड कमांडर है और जीओसी के साथ, उसको वहां से इंस्ट्रक्शन आ रही है, वो इंस्ट्रक्शन हमें नहीं मिलती है,
1: ओके
0: हम लोग अपने रेजिमेंटल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, जो सीओ ऑर्डर करता है कि ठीक है राइट फ्लैंक से फायर आ रही है, चार्ली स्क्वाड्रन आप राइट फ्लैंक पकड़िए, अल्फा स्क्वाड्रन आप लेफ्ट
1: थोड़ा
0: फ्लैंक
1: स्पोर्ट्स
0: पकड़िए,
1: वाली लैंग्वेज आ रही है, राइट फ्लैंक लेफ्ट फ्लैंक फुटबॉल वाली,
0: इनफैक्ट दैट इज द
1: आपके वहां भी
0: लैंग्वेज
1: ऐसे ही
0: यूज्ड
1: होता है?
0: ऑल्सो
1: ओ
0: इन द आर्मी, देयर आर
1: अच्छा
0: फ्लैंक्स आर देयर। देखिए बेसिक वॉर का टेक्निक होता है कि अगर एनिमी फायर कर रहा है तो आपको एनिमी का हेड डाउन कर रखना है,
1: ओके
0: क्योंकि अगर आपने अटैक करना है उसके पहले एनिमी को बोलना है भाई यू यू मेक हिम बिजी एल्सवेयर, सो यू टेल योर आर्टिलरी कि वो गोले बरसाए उनके ऊपर, वो ट्रेंचेस में है जहां पर भी है, टैंक्स में, और यू टेल योर एयरफोर्स टू बम्बार्ड ए पर्टिकुलर टैंक सेक्शन
1: ओके
0: सो दैट द एनिमी इज बॉग डाउन एंड इट इज बिजी बिकॉज इट्स डाउन बिकॉज इट इज बीइंग बम्बार्डेड फ्रॉम ऑल ओवर एंड दैट इज द टाइम यू हैव योर ऑलरेडी सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस टू गो फ्रॉम द लेफ्ट और द राइट और फ्रॉम द रेयर एंड अटैक द एनिमी, यू डोंट वॉन्ट टू फेस ए एनिमी विच इज अप एंड अबाउट एंड फ्री टू फायर एट यू,
1: शायद
0: दैट इज द
1: यही
0: जनरल।
1: गन्स जो हैं कारगिल में भी कुछ ऐसे ही हो रहा था,
0: हाँ
1: उसके बारे में बात करेंगे सर, क्योंकि एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेने का मन कर रहा है आप लोगों की तरफ से ये गीत हमारे सिविलियन भाइयों के लिए।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जॉली और हमारे साथ आज के जो मेहमान है संदेश टू सोल्जर्स में वो है मेजर एस के यादव। आपका निक नेम मिकी है,
1: करेक्ट,
0: एंड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट?
1: क्लास टू में मेरी स्कूल टीचर ने मेरा नाम रख दिया था मिकी माउस और दैट नेम स्टक। वेरी फनीली, आमटपोर में अगर आप किसी को बोलोगे डू यू नो मेजर स्वदेश कुमार यादव, दे विल लुक ए ब्लैंक, बट इफ यू टेल देम डू यू नो मेजर मिकी यादव, दे विल ऑल नो।
0: वंडरफुल, रियल मेट्स आप लोग रहते हैं फौज में, है ना सर?
1: एब्सोल्युटली।
0: हम लोग टैंक्स के बारे में बात कर रहे थे, टैंक की लाइफ। आपने कहा कि अंदर की लाइफ लगता है कि टैंक जा रहा है, टैंक ने फायर किया, ये हुआ हुआ, लेकिन अंदर की लाइफ उतनी आसान नहीं होती है, आप बिजी रहते हैं, है ना?
1: 55 डिग्रीज तक हीट में, समर्स में टेम्परेचर जाता है, उसके अंदर रहना पड़ता है। और एक्चुअल वॉर सिनेरियो में तो आपका कपोला ऊपर से बंद है, सीन है, एंड यू आर एक्चुअली लुकिंग थ्रू ए सॉर्ट ऑफ ए पेरिस्कोप, उसमें से आप देख रहे हैं एनिमी को। सो इट्स ए वेरी टफ सॉर्ट ऑफ ऑपरेशनल लाइफ इन द टैंक, इनसाइड द टैंक।
0: ऑलराइट, हम जब 26 जनवरी की परेड में देखते हैं कि टैंक्स आ रहे हैं और जो भी कमांडर हैं वो सल्यूट ले रहे हैं माननीय राष्ट्रपति जी से, लेकिन टैंक चलाने वाले कोई और हैं, तो उसी पेरिस्कोप से रूट देख रहे हैं?
1: हाँ, इनफैक्ट आई मस्ट इन्फॉर्म यू दैट मैंने वन ऑफ दिस परेड्स कमांड की है।
0: ओह वाओ,
1: कॉम्बैट टीम एज ए यंग मेजर था तब मैं
0: जी,
1: तो मैंने रिपब्लिक डे परेड पे आई गेव द सल्यूट टू द प्रेसिडेंट। तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बेसिकली एक गनर होता है और जब सल्यूटिंग डाइस पे जाते हैं तो गनर को इशारा मिल जाता है कब उसने गन को राइट टर्न करना है और डिप करना है, विच इज द सल्यूट, रेज करना है, सामने जाना है और कैरी ऑन करना है। तो दैट इज द ऑर्डर, दैट इज ऑल द गनर्स टेक्निक, द कमांडर हैज टू ओनली सल्यूट विद हिज हैंड।
0: सर बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना गूज़बम्स आते हैं, क्योंकि 26 जनवरी की परेड पर मैं भी जो आंखों देखा हाल है वो हम लोग कमेंट्री कर चुके हैं वहां पे, बट जब आप लोग टैंक्स लेके वहां जाते हैं ना, हम लोग को बड़ा बहुत गौरवान्वित फील करते हैं कि हिंद की सेना जा रही है ये।
1: हाँ, टैंक एक सिंबल बन गया है सॉर्ट ऑफ आर्मर्ड आर्मी का, जो आर्मर्ड विंग है उसका, जो तोपखाना कह दीजिए
0: जी,
1: तो इट इज बिकम अ सॉर्ट ऑफ, यस इट इज डिवेस्टेटिंग एंड इट इज आई हैव हैड ए गुड टाइम इन माय टैंक रेजिमेंट, बिकॉज फील्ड फायरिंग होती है, हमारी प्रैक्टिसेस होती है रेंजेस पे, उसमें तो काफी कुछ ट्रेनिंग होती है उस पे, दैट इज हाउ यू सॉर्ट ऑफ टैंक वॉरफेयर इज ऑपरेटेड।
0: और वो जो आपकी ट्रेनिंग है दैट इज a tough training, it is not like chalo yaar aao practice karte hain, no, it's like that's the real war
1: real
0: situation,
1: real life scenario war situations create hoti hain
0: ji
1: Rajasthan deserts mein aur wahan jaakar hum log practice karte
0: hain। Okay सर, मैंने कुछ मैसेजेस मंगाए हैं कुछ बहुत देश प्रेम के साथ, बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं वो मैसेज भेज रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि अहमदनगर से एक मैसेज आया है और वो कह रहा है मेरा नाम गजानन शिंदे, गांव करजत जिला, और उसका नाम अभी अहिल्या नगर कर दिया गया है। सर ने अभी अहमदनगर की बात की तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। आप शायद इनको तो गजानन शिंदे जी को नोन टू यू।

0: Not known to me, but yes, there are a lot of Shinde in that region. And Ahmednagar का जो Ahmedco School Center and School है,
1: जी,
0: वो एक central point है. Mainly उसी की वजह से वो town grow किया एक तरह से.
1: Okay.
0: जो सारी training जो हमारी होती है, चाहे radio की, driving and maintenance की, gunnery की training, tactical training, वो सारी जो basics होती है, वहीं पे हम लोग सीखते हैं.
1: And everyone.

0: हम लोग सीखते हैं
1: एंड एवरीवन नोज अबाउट इट. देयर इज नो सीक्रेट इन इट. क्योंकि आप एयर पे बोल रहे हैं तो मैं अगर रहमत नगर के लोकेशन भी बता दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं.
0: इट्स अ पीस स्टेशन एंड इट इज बेसिकली ट्रेनिंग फॉर ट्रेनिंग. हम जाते हैं
1: शिरडी के पास जो अहमद नगर है उसकी बात कर रहे हैं. ऑलराइट, आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे वहां. सर वो जो आप फायर करते हैं जब टैंक से उसकी एक्यूरेसी पे तो बहुत काम करते होंगे आप लोग.
0: हाँ, तो उसी के लिए हम फील्ड फायरिंग ट्रेनिंग करते हैं
1: जी.
0: तो कि हमारे रेंजेस हैं वेरियस प्लेसेस पे, बबीना में है, झांसी के पास. तो वहां पर जाके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, गनरी देखते हैं पूरी. एंड उसमें एक चीज होती है, आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि जब मैं यंग ऑफिसर था तो एक एम ऑफ होता है. मैं एक एक्सरसाइज में था कॉल्ड ब्रास टैक्स.
1: ओके,
0: जो ऑपरेशनल था ऑलमोस्ट वी हैड गॉन अक्रॉस एंड आई वाज कमांडिंग ए स्क्वाड्रन.
1: ओह.
0: एंड वहां पे हम लोग चाय पी रहे थे सुबह सुबह. रात को हमें ट्रेवल, हम खाली रात को अपने कैमोफ्लाज नेट निकालकर रात को घूमते थे.
1: ओके.
0: और अपनी लोकेशन चेंज करते थे एवरी नाइट क्योंकि हम लोग स्पॉटेड हो जाते थे. और डे टाइम में अपने कैमोफ्लाज नेट लगा के चुप के बैठते थे.
1: Okay.
0: तो डे टाइम में हम सोते थे, रात को जगते थे.
1: ये कौन सी लोकेशन थी सर, अभी बताना ठीक है?
0: समवेयर इन द डेजर्ट बॉर्डर, यू नो, उसके जैसलमेर के आगे आसपास.
1: ओके.
0: बॉर्डर के टाइम
1: जी.
0: तो वहां पे मुझे याद है सुंदर जी आर्मी चीफ थे और मैं चाय वगैरह, चाय नहीं पी रहा था, सॉरी, 11 बज गए थे, 10-11 बज गए थे. So,
1: मत बताइए क्या पी रहे थे रात के 10-11 बजे.
0: दो तीन हेलीकॉप्टर्स ऊपर घूम रहे थे. तो उस जमाने में ये जहरो वगैरह इतना नेविगेशन की जो आप बात कर रहे इतना नहीं था. जो पायलट्स होते थे वो अपने थाइस पर एक मैप रखते थे और
1: आजकल भी रखते हैं.
0: हाँ, रखते हैं. वो
1: हम लोग रखते हैं.
0: डेजर्ट में बड़ी मुश्किल होती है नेविगेशन. कई बार खो जाते थे कि भाई कहाँ जाना है. तो हम लोग अपनी टोपी शोपी लाते थे, नीचे आ जाते थे, निकलते थे. एनडीए का ही निकला कोई कोस्ट हेलीकॉप्टर. तो एक हेलीकॉप्टर नीचे निकला, उसमें से निकले सुंदर जी एंड एक थे जो हमारे तब के अरुण सिंह जी, राज्य रक्षा मंत्री.
1: ओके.
0: तो वो आ गए और सुंदर जी मुझे पहचान गए क्योंकि मैं एडीसी था आर्मी चीफ का. तो उसने बोला, मिकी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, सर मैं आई एम कमांडिंग स्क्वाड्रन हियर. तो उन्होंने बोला, आप इनको अरुण सिंह जी को ना टैंक के बारे में बताइए. तो मैं इंस्ट्रक्टर था तो मैं टैंक पे उनको ले गया ऊपर. बट आई वॉज सरप्राइज दैट ही हैड सो मच नॉलेज अबाउट दैट टैंक.
1: अच्छा.
0: तो अभी आपने एमिंग की बात की तो उन्होंने मेरे से एक चीज पूछा कि आप अगर एम ले रहे हैं एनिमी के टैंक के ऊपर तो आप सीधा फायर करते हैं के थोड़ा? तो मैंने कहा, नहीं सर. उनको मालूम था एक चीज होती है एम ऑफ.
1: ओके.
0: अगर यहां से आप फायर कर रहे हैं 1 किलोमीटर दूर
1: जी.
0: तो आप सीधा फायर करेंगे तब तक टैंक निकल जाएगा. तो आपको एक एम ऑफ लेना पड़ता है.
1: गॉट इट.
0: कि आपने उस पॉइंट पे लाना है और कैलकुलेट करना है कि वो टैंक उसी पॉइंट पे यूं ऐसे तभी आएगा.
1: मूविंग व्हीकल पे आपको कैसे स्ट्राइक करना है. ओके.
0: सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड वेरी टेक्निकल एंड आई वुड कॉम्प्लीमेंट दैट टाइम आरआरएम. आई मीन ही हैड लॉट ऑफ नॉलेज.
1: कोई कॉम्बैट कभी मौका मिला?
0: हाँ, मुझे वैली शैली में नॉर्थ ईस्ट में मौका मिला है. एक्चुअल लड़ाई तो 71 वॉर की देखी नहीं, हम तो बच्चे थे
1: जी.
0: कारगिल वॉर तक मैंने फौज छोड़ दी थी.
1: ओके.
0: शायद नॉट लेफ्ट एंड टेकन पार्ट बट देन टैंक्स का इतना रोल नहीं था वहां पर.
1: पर पहाड़ों में हम लोग जब बात कर रहे थे कि जिस तरीके से शेलिंग हम लोग करते थे, आप अभी हम टैंक्स के जब आप बता रहे थे कि किस तरीके से आप आपका जो दुश्मन है उसका हेड डाउन करने पर मजबूर करते हैं. कैन वी कम बैक टू दैट?
0: Yes, so what happens is that let me tell you about Kargil also. Kargil में भी जो लड़ाई हुई है ऊपर जो चढ़े हैं, जो supporting जो fires दिए हैं वो artillery guns ने दिए हैं. वो soften करते हैं target को. Soften मतलब कि जो bunkers हैं ऊपर उनके ऊपर धड़ाधड़ बहुत heavy firing होती है. और that is the only way where जो infantry है उसको एक vertical climb करनी है.
1: Okay.
0: तो ऊपर से तो वो shoot down हो जाएंगे. तो उनका सिर नीचे रखना है, उनका ध्यान निकालना, उनको इतनी हैवी बम्बार्डमेंट करनी है कि वो खड़े होकर शूट भी ना कर पाए और हमारी फौज वहां तक पहुंच जाए.
1: ओके.
0: तो दैट इज एन अटेम्प्ट. उसमें मरते हैं और कुछ जांबाज जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं वहां जाके और फिर हैंड टू हैंड फाइट होती है.
1: जो कि हुआ, मतलब हमने देखा वहां.
0: बिल्कुल हुआ.
1: हमारे पीवीसी जो है परमवीर चक्र से विजेता हमारे शो में भी आ चुके हैं.
0: यस यस, एब्सोल्युटली.
1: संजय कुमार.
0: और यही चीज जब पंजाब साइड या प्लेन्स में होती है वहां टैंक्स का रोल.
1: वहां टैंक्स का रोल
0: क्योंकि वहां पे कोई चढ़ाई नहीं करनी है. वहां पे बैटल फील्ड आ रही है, टैंक

0: कॉलम्स आ रहे हैं, आरटी आ रही है, आपने टेक ओवर करना है, तो टैंक्स लीड करते हैं वहां पे। और आजकल तो बीएमपी आ गई है जिसमें, और टैंक्स पर भी इन्फेंट्री को हम अपने पीछे कैरी करते हैं,
1: राइट।
0: तो हम आगे तक जाते हैं और टैंक्स एक्चुअली गो एंड अटैक, टेक ओवर द प्लेस एंड कैरी ऑन फॉर द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। इन्फेंट्री जो पीछे आ रही होती है बीएमपी में, वो उतरती है और फिजिकली वहां पहुंच जाती है पॉइंट पे, अपने ट्रेंचेस डिग करती है और वो बैठ जाती है, ये हमारा हो गया एरिया।
1: बट सर, आज के टाइम में, जस्ट लेमैन क्वेश्चन, टैंक जहां पे हम मिसाइल की बात कर रहे हैं, हम ड्रोन अटैक्स की बात कर रहे हैं, तो टैंक के लिए इट्स मोर डिफिकल्ट द रेजिमेंट, और इट्स लाइक दे हैव देयर ओन वेज टू हैंडल सच अटैक्स?
0: यू सी, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है
1: जी,
0: दिस वॉज ए टोटली डिफरेंट ऑपरेशन। इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम वी एक्चुअली डिड नॉट रियली क्रॉस द बॉर्डर and we had remote controlled drones, we set off missiles without crossing the border, the aircraft shot their targets without really crossing the border. It was a totally different game, and I would credit this war a lot to the Indian artillery, because artillery ka role bada heavy tha idhar. They have these long range guns and they had their own targets and they were doing it. Mauka nahi mila Operation Sindoor mein, shayad agar war 2-4 din aur chalti to armored aur infantry bhi andar jaake fir karna padta to wo dusri baat thi, lekin wo hua nahi.
1: Okay, right sir. Ek hamare listener hain and he's from Tamil Nadu, Sri Rangam Rajesh, Sri Rangam Tiruchirappalli, Tamil Nadu se likh rahe hain message. एंड आपको गुड इवनिंग कहते हो, कह रहे हैं कि बॉन्डेड मेजर एस के यादव सर, मिकी यादव सर, ग्रीटिंग्स टू योर बॉन्डेड द कंपनी है, एंड ऑफकोर्स हम यहां पर उनका जो मैसेज पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं मराठा ग्रीटिंग्स टू योर बॉन्डेड व्हाट्सएप टू एंड योर MH-16 अहमदनगर अहिल्या नगर मराठा बॉन्डेड रेजिमेंट टू एंड बॉन्डेड कैवलरी कैवले यादव सर टू. आई डोंट नो व्हाट ही मीन्स बाय दैट, बट something he's written typical of Maharashtra is vanakkam, and that is something very sweet.
0: Yes,
1: somebody
0: yes,
1: known
0: yes.
1: to you?
0: Yes, no, not known to me.
1: Okay.
0: But you know, vanakkam I think is not a Maharashtrian word, perhaps a Tamil word.
1: Tamil Nadu se likh
0: but
1: rahe hain,
0: aur he has the spirit.
1: Sara kiya, Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Tamil Nadu, Jai Bharat, and that's the spirit that we live with.
0: Cavalry regiment ko officers ko kai baar cavalier bol jaate hain. Okay. So that is what he's meant.
1: ओके, सूरज जी हमें दिल्ली से कह रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं 20 वर्ष का हूं और सिविलियन हूं, बहुत डिसिप्लिन रहना चाहता हूं, कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों की बातें सुन के प्रोत्साहन मिलता है. और साथ ही साथ हम आगे बढ़ रहे हैं सर, आपने ऑपरेशन सिंदूर की जब बात की तो मैं फिर से जानना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा, इफ इट्स अलाउड टू डिस्क्लोज, हमारी टैंक रेजिमेंट एक्टिव तो थी पर कितना, मतलब बहुत चौकन्नी भी थी, एंड इट्स लाइक
0: नो नो इन एंटायर ऑपरेशन सिंदूर में ऑल अवर fighting arms, whether the tanks, infantry, they were in operational stage. Chutti leave was all cancelled. One did not know which way the war would go.
1: Okay.
0: And initial war jo shuru hua hai, that was all, as I said, an air force war, an artillery war.
1: Yeah.
0: The tanks and the infantry was not used, but they were operationally ready to go in should the orders come. And they were absolutely ready to.
1: Okay. मैं सीधे टफ क्वेश्चन पूछता हूँ सर आपसे, क्योंकि आप टैंक रेजिमेंट, आप उसका अंग रह चुके हैं, यू हेडेड योर ओन ग्रुप. इज इट बिकम मोर डिफिकल्ट नाउ टू स्टेप इन टू द एनिमी जोन इस मॉडर्न एरा में?
0: यू सी, देखिए ऐसी बात है कि टेक्नोलॉजी जिसके पास है, आई वुड से ही इज हैज एन अपर हैंड,
1: सुपीरियर है वो.
0: Yes.
1: Okay.
0: So, apparently the Chinese did give them a lot of technology, due to which there were some early they tried to do something here and there. Turkey intervened, gave them the drones and stuff like that.
1: जी.
0: But we are, देखिए technically and otherwise, Pakistan is no match to the Indian army at all, and I'm saying this on air. There's no match at all. In a live war, in a conventional war today, they would not last more than 72 hours at the most. Not at all. There's no match at all.
1: Sir, हमें न्यूज ऑन AIR के माध्यम से हमारी सरहदों के पार फिजी आइलैंड से लेकर ब्राजील

0: कनाडा, यूरोप, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट में सुना जा रहा है. दैट्स अ बोल्ड कॉमेंट, अ स्टेटमेंट दैट यू गिवन.
1: आई मेंट एवरी वर्ड ऑफ इट. एंड नोइंग द इंडियन आर्मी, द केपेबिलिटीज, यस, इट हैज नॉट बीन टेस्टेड फुली इन ऑपरेशनल सिंदूर, बट शुड इट बी रिपीटेड एवर, I think it will come to light what the Indian Army means about.
0: ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अफसोस की बात है ना सर, और एक तरीके से हम एनिवर्सरी मना रहे हैं. थोड़ा दुख है कि पहलगाम में वो चीज हुई और उसके बाद भारत ने जवाब दिया. दुख है कि हमारे को सिविलियन लाइव्स खोनी पड़ी, उसका तो दुख है. एक छोटी सी, अगर आप परमिशन दे तो एक छोटी सी झलकी ऑपरेशन सिंदूर की लेते हैं और इस छोटे से किस्से में सब कुछ समझ में आ जाएगा. और आपका जो जज्बा मैं देख रहा हूं सर आपकी आंखों में, आह लाजवाब है सर. इसे सुनते हैं सर.
2: अरे बच्चे का बच्चा लो.
3: हाँ बच्चा देगा, कोई बात नहीं. बैठे करेंगे. क्या हुआ इसको, क्या हुआ?
2: प्लीज प्लीज आस्क फॉर हेल्प. वी डोंट नीड.
3: ओके, डोंट वरी, डोंट वरी. यू ओके? यू नीड अ वाटर सर? अपने आप बोले ना मुझे.
2: यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी. मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी.
3: यहाँ पे
2: उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम भी है, उसने उसको गोली मार दी.
4: इंडस वाटर्स ट्रीटी ऑफ 1960 विल बी हेल्ड इन अबेयंस विद इमीडिएट इफेक्ट.
5: आई से टू द होल वर्ल्ड, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट.
6: ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था.
7: इट वॉज डीम्ड एसेंशियल दैट द परपेट्रेटर्स एंड प्लानर्स ऑफ द 22nd अप्रैल अटैक बी ब्रॉट टू जस्टिस.
8: 9 टेररिस्ट कैंप्स वर टारगेटेड एंड सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड.
9: दीज लोकेशंस आर लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, म्यानो, छोर एंड नियर कराची.
10: टू टारगेट सिविलियन पॉपुलेशन, इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट.
11: जस्ट टू पॉइंट आउट,
12: वी आर नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्वड इन द मिडल ऑफ वॉर, दैट्स फंडामेंटली नन ऑफ आवर बिजनेस.
13: द टेररिज्म एंड फंडिंग एंड बैकिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैज बीन एंड वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान्स हिस्ट्री.
14: दिस वाज टाइम to convey some message to our adversaries.
15: We were of course prepared.
16: Few things have been said at the level of the Prime Minister.
5: Bharat par aatanki hamla hua to muh tod jawab diya jayega.
16: And this has never happened in the history of independence.

0: You were happy with the how the forces responded. I mean, I know it's a funny question, but aapke kuch sunna cha rahe hain na aapse, isliye aisa sawal pucha. Were you also willing to go ki yaar mujhe bula lo, main bhi aata hu.
1: I was there and serving at that time because bada mood tod jawab diya hai India ne aur unke jo mare hain humne airfields pe almost knocking on the door of their nuclear capabilities, it's a big thing. It was a big signal given to them.
0: And that technology, you are saying ki yehi superiority aap bata
1: rahe hain. Yes, okay. The Air Force has that. I mean, it was pinpoint sort of, you know, absolutely, they were knocking on the door of their nuclear storage facility, which is a big thing.
0: Okay. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारा डिफेंस भी अच्छा होना बहुत जरूरी है ना. वी डिफेंडेड वेल ऑल्सो. ऐसा तो नहीं है कि वहां से अटैक नहीं है. अटैक्स तो बहुत आए लेकिन सारे विफल किए हमने.
1: एब्सोल्युटली उनके बेसिकली ड्रोन अटैक्स थे. अटैक तो क्या आया था उनका, मतलब एक एक आध कोई मिसाइल उन्होंने दिल्ली की तरफ भी डाला था जो कि मेरे ख्याल से मिडवे पंजाब में कहीं ऑलरेडी शूट डाउन कर दिया गया था
0: जी. दैट वाज द बट हाउ डू यू नो कि वो दिल्ली की तरफ आ रहा था सर. हमारी टेक्नोलॉजी है जो मिसाइल फायर होता है उसका रूट पता लग जाता है.
1: जब एनालाइज करते हैं जो मिसाइल को तो उसकी रेंज देख लेते हैं ना. अगर लाहौर से उस एरिया से जहां से अगर लॉन्च किया है, अगर वो दिल्ली रेंज में है तो ऑब्वियसली इट्स अ सिटी व्हिच इज बीइंग टारगेटेड. सो इट वाज डाउन्ड. इट वाज एब्सोल्युटली शॉट डाउन. सो दैट्स अ बिग थिंग.

0: आप सुन रहे हैं एक खास प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, और बहुत ही खास हमारे साथ यहाँ पे हमारे गेस्ट हैं आज के, और वो हैं मेजर एस के यादव। और बहुत सारे लोग आपको, आपके जो कॉलीग्स हैं वो आपको मेजर मिकी यादव भी कहते हैं। ओके, आप लोग का एक सॉलिड ग्रुप है, आपने कहा कि वी आर स्टिल बॉन्डेड टुगेदर। व्हाट्सएप का आपने कहा था कि ग्रुप है, तो इन ऑल कितने लोग होंगे उसमें?
1: एनडीए का ग्रुप है, हम लोग करीब 350 लोग थे जो पास आउट हुए थे एनडीए से। देखिए, एनडीए का ग्रुप अलग है, आईएमए का ग्रुप अलग होता है। जो एनडीए के थ्रू नहीं गए लेकिन डायरेक्ट एंट्री होते हैं, तो दो ग्रुप्स हैं।
0: ओके,
1: तो एनडीए को हम बॉन्डेड बोलते हैं, बॉन्डेड ग्रुप है।
0: तो वो जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तब आप लोग कैसी बातें कर रहे थे?
1: और डिस्कशन होती थी और डिबेट्स भी, क्योंकि उसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, हम तीनों थे कोस्ट गार्ड। तो एयरफोर्स वाला अपना एक्सपर्ट बताता था, आर्मी वाला अपना, और नेवी वाला, वो जो देवर नेवी वाज ऑपरेशनली रेडी एक्चुअली फॉर द ब्लॉकेड।
0: मेरा अगला यही सवाल था कि सर आपको तो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट मिल रही होगी।
1: हाँ, ऑन द ग्रुप वॉट एवर देवर ऑल्सो दे यूज टू प्रिडिक्ट, दे टू से वॉट शुड बी डन, वॉट वॉज नॉट डन राइटली, वॉट वॉज डन राइटली, एंड वी यूज टू डिबेट ऑल दैट।
0: एंड ऑफकोर्स एक जज्बा बॉलीवुड भी तो लेकर आता है ना आप लोगों के लिए। आई एम श्योर आप गीत सुनते हैं कभी, गीत सुन के भी एक जज्बा जोश आ जाता है। हम लोगों को तो आता है, आप लोगों को भी आता है?
1: एब्सोल्युटली।
0: आकाशवाणी के साथ आपका कैसा लगाव रहा है?
1: पर्सनली मेरा फेवरेट है आपका रेनबो, बिकॉज इट गिव्स मी lot of retro music also, it gives me all sorts of music, so I like it, it's my favorite.
0: FM Gold भी है जिसमें,
1: FM Gold है, I like it.
0: तो आपने कब वास्ता कब पढ़ा आपका रेडियो से?
1: देखिए, रेडियो तो ever since we were commissioned, हमारे पास तब ट्रांजिस्टर होता था, एक छोटा सा FM तो नहीं था, तब ऑल इंडिया रेडियो चलता था, चाहे बॉर्डर पे हो कहीं भी हो। इनफैक्ट आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, एक ANPRC 25 रेडियो सेट होता था। हम लोग जब रास्ता एक्सरसाइज में थे और हम लोग ट्यूनिंग करते थे, कई बार हम पाकिस्तान बॉर्डर पे थे तो उनके गाने आ जाते थे उसमें।
0: अच्छा, उनके गाने उनके, हमारे भी जाते हैं सर,
1: हमारे भी जाते हैं, तो उसको लगा देते थे, शेव करते करते गाने सुन लेते थे, वो जमाना था। सो रेडियो हैज हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली।
0: ऑलराइट, तो कोई गीत अभी आप अगर बोलें, कौन सा गीत प्ले करें?
1: हाँ, एक तेरी मिट्टी, दिस इज रिक्वेस्ट फ्रॉम नीति भल्ला।
0: ओके, आप ही के बॉन्डेड जो ग्रुप है उन्हीं की सदस्य
1: हैं, फ्रेंड्स हैं, में से बॉन्डेड तो नहीं है, बॉन्डेड तो एनडीए वाला ग्रुप है, ये लेडी है।
0: ऑलराइट, तो नीति जी आपकी फरमाइश पूरी हो रही है आकाशवाणी में।

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ मेजर एस के यादव हैं और T-72 टैंक के इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं, टैंक रेजिमेंट के साथ रह चुके हैं। आपके पूरे इस करियर में विद द यूनिफॉर्म ऑन कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें हमारे सिविलियंस के साथ जो बड़ा यादगार है, एक्शन के दौरान या कुछ एडवेंचर?
1: पर्सनली मैं डिसिप्लिन के बारे में बता देता हूं आपको। जब मैं यंग ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया था तो मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर था रेजिमेंट का।
0: और मेरे शो में स्पोर्ट्स आ ही जाता है, लोग कहते हैं आप जानबूझ के लाते हो, बट इट्स वंडरफुल टू हियर। प्लीज गो अहेड।
1: एक एडजुटेंट होता है हमारे, टोनी बेन्स, ही इज इन द यूएस नाउ, आई डोंट नो इफ ही इज लिसनिंग दिस, बट मैं नया नया था, मेरी 2 महीने की सर्विस थी।
0: ओके।
1: तो उन्होंने बोला शो मी द फुटबॉल शूज, डिस्प्ले करो कैसे हैं। तो मैंने शूज निकाले, डिस्प्ले कराए सारे रेजिमेंट के, तो एक शू में लेसेस नहीं थे, तो उसने उसकी वजह से मुझे गार्ड ड्यूटी, एक राउंड द क्लॉक गार्ड ड्यूटी की पनिशमेंट दी थी। उसमें क्या होता है कि यंग ऑफिसर को हर 1 घंटे बाद गार्ड रूम, एक जो हमारा होता है जहां पे हमारा एम्युनिशन रखा होता है, वहां जाके साइन करना पड़ता है एवरी 1 आवर स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट 9 PM टू मॉर्निंग 6 AM, सो दैट यू डोंट स्लीप।
0: अच्छा।
1: सो दैट इज अ पनिशमेंट फॉर द यंग ऑफिसर इफ यू मेक ए मिस्टेक।
0: ओके।
1: सो माई मिस्टेक वॉज दैट आई डिड नॉट इंश्योर दैट देयर वर लेसेस इन द फुटबॉल शूज
0: एवर,
1: सो दैट आई यूज टू ऑलवेज रिमेम्बर।
0: बट इट ग्रूम्ड यू इनटू अ गुड
1: इंडिविजुअल। यस, एग्जैक्टली। एनडीए में ऑल्सो आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि अगर आपके पास टेबल मैनर्स नहीं है, दे टीच यू अदर देन They teach you things like table manners, courtesy, opening the door for the lady, table के ऊपर आप elbow रख के नहीं खा सकते। अगर आपके senior ने आपको देख लिया तो वो आपका पूरा नमक आपके अंडे में डाल देगा,
0: वो बोलेगा खाओ,
1: पूरा आप खाओ, या पूरा का पूरा आपको बोलेगा टेबल के नीचे जाओ, और वो सारे वहां से जो गलती कर देते थे नीचे से उसको बम्प्स पिक किक करते थे। तो ये चीजें आपको याद रहती है लाइफ पर, यू नो कि।
0: बट आपको प्रॉब्लम नहीं होती ये सब डिसिप्लिन लेके जब आप सिविलियन सोसाइटी में अब जाते हैं?
1: काफी फौजियों को होती है, बट एडजस्ट करना पड़ता है, बट इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट। इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट।
0: तो गुस्सा कैसे चबाते हैं फिर आप?
1: अंदर अंदर हम बोलते हैं दीज ब्लडी सिविलियंस, जोकिंग करते हैं, दिस इज ऑल जोक्स, बट यू नो अगर कोई मैनर्स वूनर्स का अगर हमारे जैसे होता है तो हम अपने मन में ही करते हैं।
0: आप जब आपने अपनी सर्विस पूरी कर ली उसके बाद एडवेंचर में आप चले गए? बिल्कुल। नेचर से बहुत प्यार करते हैं।
1: चला गया था
0: जी,
1: एंड माय कंपनी वाज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग बंजी जंपिंग इनटू इंडिया, वी वर द सेकंड कंपनी टू ब्रिंग हॉट एयर बलूनिंग इनटू इंडिया, एंड वी टू सेट अप एडवेंचर स्पोर्ट्स, एडवेंचर ट्रैक्स, mountaineering and stuff like that, which we still do. A company, I don't know whether I can take the name of the company, Wanderlust, and it's a well-known company now.
0: So, aap adventure mein matlab aapka shuru se hi shauk tha?
1: Haan, always, right, always. From the army days.
0: Jab tak passion nahi hoga, tab tak aap nahi kar sakte na kaam.
1: Army days se. And even now, today I'm a trekker. I trek a lot. We are going for a Harki Dune trek next month now. And we did the Great Lakes trek.
0: और कोई सिविलियन आपके साथ जुड़ना चाहे जो disciplined है वो जुड़ सकता?
1: नहीं, civilians are also disciplined. They are good lot. And I have lot of civilian friends.

0: friends, and we all go together in my trekking group, yeah, other groups.
1: कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको शेयर करना चाहते हैं? ये बताइए कि आज के टाइम पे जो युवाओं को आप देखते हैं, है ना, लेट्स गेट टू दिस पॉइंट स्ट्रेट, जब आप इनको देखते हैं तो आप 15 साल की उम्र में एनडीए गए, आप एक डिसिप्लिन्ड बॉय बन गए या बना दिए गए, उसके बाद एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आपकी चली आगे, आपको लगता है कि अब जो मॉडर्न सोसाइटी के जो युवा हैं जो आपको सुन रहे हैं, कुछ शायद चाहेंगे कि फौज में आए, कुछ नहीं आ पा रहे होंगे, तो फौजी जैसी जिंदगी वो डिसिप्लिन लाइफ कैसे जिए?
0: देखिए, मेरा कहना है, एंड इट्स ए पर्सनल ओपिनियन, दैट एवरीबडी शुड स्पेंड सम टाइम इफ दे कैन इन द आर्मी फॉर इवन इफ इट इज फॉर 5 years, लाइक द शॉर्ट सर्विस कमीशन. ये जो बेस बनता है ना, जो शुरू का, एंड वो जो डिसिप्लिन जो बेस होता है वो अर्ली डेज में ही हो सकता है. आप वो बेस 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में नहीं बना सकते.
1: ग्रेट पॉइंट.
0: यू हैव टू कैट देम यंग. एंड ये अगर हम बेस दे दें अपने यूथ को कि आपको पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं, कि कंपल्सरी आपको 5 years या 3 years की आर्मी ट्रेनिंग करनी है, देर विल बी ए होल लॉट ऑफ चेंज इन द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट डिसिप्लिन.
1: यस,
0: टेल्स ऑफ पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, सो थिंग्स लाइक दैट विच द आर्मी टीचेस यू. एंड आई होप समडे दिस हैपेंस.
1: राइट. आपको प्यार व्यार नहीं हुआ कभी? सर आप बहुत सीरियस सीरियस बातें करो. टैंक की बात कर दी मैंने, फायर कर दिया हेलीकॉप्टर से, जनरल उतरे, उन्होंने बोला टैंक को इधर करो कुछ.
0: आप जब यंग ऑफिसर होते थे नाभा में, एक छोटा सा स्टेशन है पंजाब में.
1: अच्छा.
0: मुझे मालूम है कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर, नाम नहीं लूंगा, कोई भी सीओ की डॉटर्स होती तो उनको इम्प्रेस करने के लिए हम लोग टेनिस, बैडमिंटन खेलते थे,
1: जोर जोर से शॉटें मारते थे.
0: कभी कभी कुछ लेटर्स एक्सचेंज होते थे तो अच्छा. टेनिस कोर्ट के पास कहीं एक लेटर चला जाता था, वहां से दूसरे दिन लेटर आता था, तो बस वही होता था.
1: बस
0: दैट इज द टाइप ऑफ रोमांस वी डिड इन दोस डेज.
1: अच्छा. एक रोमांटिक गाना चला देता हूँ सर, आप ही की प्लेलिस्ट से लिया हुआ है कुछ. इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, किसकी फरमाइश चाहिए? बताते हैं सर, ये गाना सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं जल्दी.

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जौली और हमारे साथ मेजर एस के यादव मौजूद हैं। तो यादव साहब, अच्छा किया आपने थोड़ा बहुत बता दिया कि रोमांस है आपके दिल में और चिट्ठियां आप लिखते थे, तो फौजी की चिट्ठी भी वही होती है कि बम धड़ाके वाली या कुछ रोमांटिक बातें होती हैं उसमें?
1: फौजी भी आप जैसे ही हैं, हम और आप, और हमें भी वही फीलिंग्स है जो आप में है और वही जज्बा है, तो एब्सोल्युटली देयर इज नो डिफरेंस।
0: दिल्ली में अभी ये मौसम चल रहा है कि बोगनविलिया बहुत देखने को मिलता है, और उससे जुड़ी कोई खास बात आपसे जुड़ी हुई है?
1: बोगनविला मेरा एक पैशन था, एक माउंटेन्स भीमताल के पास एक मैंने फ्रूट ऑर्चर्ड बनाया है।
0: ओह वंडरफुल।
1: और उसमें करीब 500 फ्रूट ट्रीज लगाए हैं।
0: ओह।
1: एंड आई कॉल इट बोगनविला माउंटेन रिट्रीट। और 5 कॉटेजेस बनाई है, जो द गुड थिंग अबाउट दैट इज कि उसमें कोई आरसीसी फुटप्रिंट नहीं है।
0: ओके।
1: खाली पाइन वुड, ग्लास और लोकल स्टोन का है।
0: अच्छा।
1: और उसमें खाली नेचर है, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं,

0: दैट इज इट.
1: आप बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है वहीं पहुंच गए.
0: मैं वहीं पहुंच जाता हूं ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड.
1: वहीं पहुंच जाता हूं. आप डॉग लवर भी हैं सर.
0: यस.
1: आपने बातों बातों में हमें बताया और मैं भी डॉग लवर हूं. एंड अभी लगभग दो दिन पहले दिल्ली कैंट एरिया में जो कैंट बोर्ड है उसके जरिए एक वेट हॉस्पिटल भी खोला गया है. और न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने उसका उद्घाटन किया, सुन के अच्छा लगा. तो ये
0: मेरे पास मुझे याद नहीं है मेरी इंटायर लाइफ में एक्चुअली मेरी फैमिली में एक डॉग ना हो.
1: अच्छा.
0: एवर. माय फादर वाज ए डॉग लवर एंड आई हैव हैड लैब्राडोर्स. अब मेरे पास एक गोल्डन रिट्रीवर है, शिफू है उसका नाम. और अभी एक मेरे दोस्त ने मुझे एक पहाड़ी शीप डॉग जो उसको रोड साइड पर मिला था उसको उसने रेस्क्यू किया. एंड थैंक यू विवेक अगर आप सुन रहे हैं. और उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया कि अगर आप इसको रखना चाहे तो हम
1: विवेक
0: उसका नाम रखा है और उसको हमने अभी 5-6 महीने का है एंड इज ए शीप डॉग और बहुत मजा आता है.
1: मेरे पास फोन आते हैं आईपीएल के मैचेस आ रहे हैं पासेस मिलेंगे. विवेक ने अगर डॉग की जान बचाई तो एक पास उसको दूंगा आईपीएल का. मैं नहीं सर, मैं देके रहूंगा.
0: विवेक यू अर्न्ड अ पास आईपीएल पास इफ यू लिसनिंग.
1: टॉप टियर होगा.
0: लैंडोर में रहते हैं मसूरी के पास.
1: फिर तो बच गए. एनीवे सर यू जस्ट मेंशन अबाउट योर डैड. आई थिंक हमारे प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता कि आपके एक तरीके से आइडल, आपके इंस्पिरेशन, आपके फादर फॉर्मर एयरफोर्स पायलट, हंटर जहाज उड़ाते थे और उसके बाद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे, जो फाइटर पायलट, यू नो, बिलोंग्स टू माय कम्युनिटी. टेल अस समथिंग अबाउट हिम सर.
0: माय डैड केम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन हरियाणा
1: जी
0: एंड ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट स्टीफन्स कॉलेज.
1: वाओ.
0: एंड देन जॉइंड द एयरफोर्स.
1: हरियाणा में कहां से सर?
0: एक गांव है रेवाड़ी के पास कॉल्ड दखोरा. इट्स नियर कोसली. अगर आपने सुना रेवाड़ी तो सुना.
1: वहां से और भी फाइटर पायलट्स आए.
0: कोसली इज ए विलेज बाय द वे इन हरियाणा जहां पे सारे ऑफिसर्स यहां देयर इज ए ऑफिसर्स मेस इन दैट विलेज.
1: वाह.
0: तो
1: स्क्वाड्रन लीडर मनीष यादव
0: काफी हैं, एयरफोर्स के भी हैं.
1: ओके.
0: सो दैट इज हाउ ही दैट इज हिज रूट्स एंड देन ही ग्रू अप.
1: एंड वाज ही पार्ट ऑफ द वॉर? Hunter उड़ाते.
0: Yes, yes, he was seen the 71 war, he's seen the 65 war. Yes.
1: Okay. और क्या खास बात आपके फादर में आपको लगती थी जो आप उनको, हमारे डैड हीरोज तो होते हैं लेकिन सबके डैड के अंदर एक खास क्वालिटी होती है, तो आपको क्या लगता था उनके
0: सुबह सुबह जब वो यूनिफॉर्म पहनते थे मैं देखता था छोटा बच्चा और मैंने कहा यार मैं कब बड़ा होऊंगा और ये यूनिफॉर्म पहनूंगा. और ऊपर हवाई जहाज उड़ते थे, देखते थे हम लोग. एंड मेरे फादर भी टॉल थे, नाइस, एंड फॉलोड हिज फुटस्टेप्स.
1: पर आपने भी फ्लाइंग सीखी है.
0: हाँ.
1: एंड यू आर अ क्वालिफाइड पायलट.
0: यस, आई हैव गॉट अ सीपीएल.
1: ऑलराइट. तो हाउ कम एयरफोर्स को छोड़कर, नॉट दैट टैंक में नहीं जाना चाहिए था लेकिन लड़ाकू टैंक, लड़ाकू विमान.
0: आई लेफ्ट द आर्मी, आई वेंट अवे टू यूके.
1: ओके.
0: एंड कैंट से मैंने अपना फ्लाइंग लाइसेंस लिया था.
1: वाओ. राइट सर, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम आगे और बढ़े. आपके जो बॉन्डेड ग्रुप है वहां से कोई और फरमाइश तो नहीं आई सर गाने की? अगर आई है तो हम जाने से पहले उसे प्ले करेंगे सर.
0: काफी है लेकिन आप अगर एक ये कर दो अभी ना जाओ छोड़ करके.
1: हाँ हाँ. दिल अभी भरा नहीं. सर ये तो हमें कहना चाहिए आपके लिए कि अभी ना जाओ छोड़कर. मोहम्मद रफी साहब की आवाज में एक गीत है तो इसको मैं चलाता हूँ ढूंढ के सर.

0: राइट देन सर, इट वॉज अ शेयर प्लेजर आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. एंड ये गीत तो मैं चला रहा हूँ, बट वी मीन इट एवरी लिरिक ऑफ दिस गोल्डन सॉन्ग. कुछ चलते चलते हमारे युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
1: थैंक यू सो मच गाइज, प्ले लॉट ऑफ स्पोर्ट्स.